बेशक रब्बुल आलमीन से यही दुआ है कि हमें तेरी हम तेरी पनाह मांगते हैं अपने किए हुए अमाल के शर से और उन बुराइयों के शर से जो अभी हमने किए नहीं, और उन गुनाहों के अंजाम से और अंदरूनी फितनों से जो हमें बचाए रखना। ये रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम गुनाहों से बच के रहें। और मैसेज आए हमारे असलम साहब और रुखशान आपा की तरफ से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स, स्पेशल ग्रीटिंग्स टू खैर इंसाद चोगले, आई विश ऑल रिटर्निंग हुजाज हज मबरूर एंड मकबूल इंजॉइंग सफिया सिलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह, लव एंड दुआज फ्रॉम रुखशान एंड असलम, नॉट फॉरगेटिंग ऑल लिसनर्स एंड ऑल टेक्निकल स्टाफ, आमीन टू ऑल सफिया ब्यूटीफुल दुआज। असलम साहब और रुखशान आपा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, आपकी हौसला अफजाई का। और आज है 7 जून 2027, 20 जिलहज 1447। आज खास दो बर्थडे हैं मेरी प्यारी दोस्त रेहाना फिरफिरे और बीबी दलवी, जो दोनों खूबसूरत हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदरुस्ती दे, लंबी उम्र, और उनका साया हमेशा अपने बच्चों पे रखे और उनका दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो ये अगला कलाम उनके लिए, बुला लो फिर।

ये भी बहुत ही खूबसूरत कलाम कर्कली ब्रदर्स की आवाज में, और 1437 अब ख़त्म होने जा रहा है, हम तकरीबन 20 ज़िलहज पर है, और अगला कलाम है हमारा हुसैन, ज़िंदगी है, बढ़ रहे हैं मुहर्रम के महीने की तरफ।

मां चली गई और घर का हर कोना रो पड़ा। दीवारें आज भी उसका नाम लेकर मुझे पुकारती हैं, लेकिन वो आवाज अब कभी लौट कर नहीं आती। जब से मां गई है घर में अजान तो होती है मगर सुकून नहीं उतरता। रोटियां आज भी बनती हैं लेकिन उनमें मां के हाथों वाली दुआ नहीं मिलती।

0: माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है अंजुम, माशाल्लाह. मैं हमारी रशीदा नखलिस्तान से कहती, माशाल्लाह ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, जस्ट लव अंजुम रेंडरिंग द ब्यूटीफुल मीनिंग तुमको जे देखा एंड लविंग द प्रोग्राम. और आंटी गौरी आल्सो सेज दैट द सॉन्ग वाज हर हस्बैंड्स वेरी फेवरेट, लेट हस्बैंड्स वेरी फेवरेट. अंजुम लेट्स टॉक इन उर्दू नाउ. आई एम श्योर यू सिंग सो, आप उर्दू भी बोलती होंगी अच्छी तरह से.
1: मैं ठीक से उर्दू बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगी.
0: नहीं, आप
1: मैं उर्दू में गा सकती हूँ.
0: बेशक, बहुत अच्छी तरह से आप गा सकती हैं अंजुम. और आपकी आवाज माशाल्लाह लोग पसंद करते हैं, और आपके गजल्स बहुत ही दर्द होता है उनकी उस आवाज में जब आप गजल बोलती हैं तो. और मुझे बताएं कि आप उर्दू, मतलब आपकी शौक है कि आप जस्ट ऐसे
1: ऐसे ही. माय डैड यूज़्ड टू स्पीक उर्दू टू मी एंड इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, स्पेशली फॉर पोएट्री. एंड अगेन द डर्ड दैट यू टॉक अबाउट, आई थिंक इट्स इट कैन बी द उर्दू लैंग्वेज इज सो इवोकेटिव ऑफ यू नो डिफरेंट इमोशंस. सो या
0: डेफिनेटली. तो अंजुम, आप हमें एक सॉन्ग सुनाए हमारे सुनने वालों को.
1: जस्ट गेट द की. This is one of my favorite ghazals, I think.

बहुत खूब बहुत खूब. कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है. ये है हमारी प्यारी अंजुमारा खान जो शो करने जा रही हैं महफिल यारा म्यूजिकल गैदरिंग ऑफ फ्रेंड्स एट बैक्सटर कॉन्सर्ट हॉल 13 जून 2026 एट 7:30 PM. और इंडिया से आर्टिस्ट आ रहे गौरव वासवानी, अतीश साहब, संजय दस, अरशद खान और राव साहब, अमित गाडगिल और रूपक शर्मा. और फिर हमारे लोकल आर्टिस्ट भी होंगे. और 15 जून को रूहानियत होगी, गजल शो होगा, एकोज ऑफ लव इन सोलफुल मेलोडी एंड इवनिंग ऑफ गजल सूफी एंड रोमांटिक सॉन्ग्स इस्लामी ऑडिटोरियम में. और आर्टिस्ट होंगे जरीना साबले और शमीम राव. तो भूलिएगा नहीं, अगर आपने टिकट्स खरीदे नहीं हैं तो टिकट्स बहुत जल्द खत्म हो रहे हैं, तो अपने टिकट जरूर ले आए. और अगर आपको टिकट्स लेने हैं तो आप 0827786175 अंजुम को कॉल कर सकते हैं. तो चले सुनते हैं जरीना साबले की आवाज में ये अगली गजल.

माँ चली गई और घर का हर कोना रो पड़ा। दीवारें आज भी उसका नाम लेकर मुझे पुकारती हैं, लेकिन वो आवाज अब कभी लौट कर नहीं आती। जब से मां गई है घर में अजान तो होती है मगर सुकून नहीं उतरता। रोटियां आज भी बनती हैं लेकिन उनमें मां के हाथों वाली दुआ नहीं मिलती।

बेशक बहुत ही खूबसूरत कलाम. और हमारी प्यारी रशीदा पा कहती है, मे आवर मदर्स बी प्लीज्ड विद अस एंड मे अल्लाह ग्रांट माय मॉम अ लॉन्ग लाइफ एंड शी इज बीन माय स्ट्रेंथ सिंस द पासिंग ऑफ माय हस्बैंड. जस्ट आस्किंग मी एवरी टाइम इफ आई एम ओके इज अ दुआ फॉर मी. अल्हम्दुलिल्लाह, ब्यूटीफुल सॉन्ग. जज़ाकअल्लाह खैर रशीदा पा. ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर प्रोग्राम में माँ बाप का हर करूँ, क्योंकि मैं खुद अपने माँ बाप को बहुत मिस करती हूँ. दुआ करें उनके लिए. अल्लाह ताला सबके माँ बाप को, सब मरहूमों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और उनकी मगफिरत करें. और मैसेज है, बर्थडे मैसेजेस हैं हमारे मुदलवी ख़ानदान में जो इस तरह से हैं. बर्थडे विशेज़ टू इलाम फॉर 1st of June, शबनम 2nd June, मजीद भाई मजीद राव 3rd June, नसेबा 5th June, कुदसिया 6 June, समीर इस्माइल 9th June और मरियम 9th June. में अल्लाह फुलफिल द हार्ट फिल डिज़ायर्स. And this comes from Dalvi Abbas, Raoud, Ismail and extended families. And special birthday wishes to our dear friend Rehana. And my dear friend Shireen, who is tomorrow's birthday. May Allah bless them all with good, long, healthy life and khair and barakah, inshallah. And my dear friend Amina also saying that she wants to send a message from her side. For the Hujjaj, Allah Ta'ala also हर तरह से नवाजे. एंड कहती है अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू द न्यू मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह द जज हैव रिटर्न्ड एंड कंप्लीटेड द ब्यूटीफुल लाइफ चेंजिंग जर्नी. इट वाज अ टाइम ऑफ स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन, ब्रदरहुड, पेशेंस एंड काउंटलेस ब्लेसिंग्स दैट विल रिमेन इन देयर हार्ट्स फॉरएवर. एंड वी सिंसियरली मेक दुआ दैट अल्लाह एक्सेप्ट देयर हज एंड उमरा, फॉरगिव देयर शॉर्टकमिंग्स एंड ग्रांट देम द एबिलिटी टू लिव बाय द लेसंस दे हैव लर्नड. मे ही मेक दिस जर्नी अ मीन ऑफ ड्रॉइंग क्लोजर टू हिम एंड अर्निंग हिज प्लेजर. और आमीना आपा आगे कहती है कि शी रियली मिसेज अर मदर एंड शी सेज शिफा टू ऑल द सिक एंड मरहूम मरहूम जन्नतुल फिरदौस एंड स्पेशली टू हस्बैंड जुबैर पाकर एंड हर पेरेंट्स हुसैन एंड हाफिजा संगे एंड बिलेटेड बर्थडे फॉर आयशा पाकर एंड मे अल्लाह मस्ट प्रोटेक्ट देम. बेशक. और एक बहुत ही बर्थडे मैसेज है हमारे पालेकर, जो आज उनकी 91st साल की रह थी. तो अल्लाह ताला उनको भी खुशहाल रखे और उन्हें लंबी उम्र और सेहत दें. और एक एनिवर्सरी मैसेज है नूरुद्दीन और उनकी खूबसूरत बेगम शमीम के लिए, उनकी आज शादी की सालगिरह है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत मुबारक हो. इन्हीं मैसेजेस के साथ हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म हो गया है. हमें टेक्नीशियन ने लाल झंडी बता दी है और वो कहते प्रोग्राम ख़त्म होने का वक्त हो चुका है. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शब्बे जेकब्स का, बहुत मेहनत करते हैं एंड ही इज़ ऑलवेज डेडिकेटेड एंड ऑलवेज विद अ स्माइल ऑन हिज फेस. और आप हमारे सुनने वाले, आपकी दुआएं और आपकी हौसला अफजाई काबिले तारीफ है. इसके बाद आप सुनेंगे एक खूबसूरत कलाम मिट्टी का पुतला और फिर नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की आवाज़ में जाने दूर गए, ये मैं डेडिकेट कर रही हूँ रशीदा मौज़ा के लिए. और उसके बाद एक वाकया होगा तस्लीम आरिफ की आवाज़ में और सलामी होगी चांद अफजल कादरी की आवाज़ में. इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे. फ़ी अमानिल्लाह, शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह खैर.